0: अच्छा लगा?
1: रहते हो
0: सच।

0: बस तुम रहते हो। मिर्ची,
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट, मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

सुबह का ब्लॉक हुआ अगर शाम को अनब्लॉक हो जाए तो उसे ब्रेकअप नहीं कहते, उसे मोहब्बत का इंटरवल कहते हैं। और आप तो सबसे ज्यादा डील कर रहे हो इसके साथ, गेटिंग ब्लॉक्ड टाइम एंड अगेन, लेकिन ना सुनने की आपको आदत नहीं है। देन यू सेंड मी अ मैसेज थिंग, वो समझ क्यों नहीं रही है कि मैं उसका प्रिंस चार्मिंग हूँ, व्हाई इज शी सो ब्लाइंड एंड सो डेफ। अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज हो ना कि बार बार ब्लॉक क्यों हो जाते हो, देन आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, ताकि मैं आपको कंसेंट और नो के बीच का अंतर सिखा सकूँ, ठीक है। और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE। सो हिट मी अप बेबी, लेट्स टॉक अबाउट लव रिलेशनशिप्स एंड ऑल थिंग्स टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot.

0: ये जो अपनी बहन से टैडी बियर चुरा कर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया एंड सेड दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट माय डार्लिंग, उसे पता चल गया ना, उसके बाद जो छितर बढ़ेंगे उसका क्या करने वाले हो आप? You guessed it, my darling. It is time for your confessions. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. Hit me up on Insta या FB with your confession, and I'll be so happy to talk to you. मेरे साथ लाइन पर अभी है मेरे मिस्ट्री कॉलर. Hello, mystery caller.
1: Hi, रोशी.
0: आप बहुत shy feel कर रहे हो ना?
1: यार, you get.
0: आप shy मत feel करो, ठीक है? एक तो किसी को आपका नाम नहीं पता है. दूसरा, I'm not even going to ask you too many questions because ये non-judgmental zone है. But आपने मुझे जो story सुनाई थी Instagram पर, inspired by the video that you saw, वो story एक बार फिर से सुना दो.
1: Yeah, it was like quite long back, around more than 12-13 years. काफी late night था. I was just coming back from a friend's place, and at that time there was no transport available, so I was just walking down the road. And they stopped by a corner shop to get a smoke for me. And suddenly this big car comes in and just stands beside you. And the driver pops up, and the driver was asking me to just guide to some address which was close by, nearby. And that time, there was not all these Google Maps and all, were not there. But now he was insisting me to hop onto the car, and the lady who was sitting at the back seat, she was like all decked up and everything, and dekh ke pata lag raha tha ki kafi high society type lady hai. And she started insisting, nahi aap saath mein aake thoda dikha do address kahan pe hai. Bolo bhai samne ki madam sabhi hai ye, but pass mein aap chale jao ye. Then she's like, you know, if you come down, oh, my driver will drop you back home. Then she started offering, like, we can have a drink together. And based on that, tab mujhe thoda sa ajeeb lagne laga. Bolo, to gadbad hai bhai, raat ke matlab 12:30 pone 1 baj rahe hain. Aise koi anjaan koi lady jaise asking you to show up an address and then offering drinks and all. Kuch to gadbad lag raha hai. Nikalne ki koshish kar rahe hain, somehow manage karke, but then she straight away like came up to the near the window and straight away offered out, like, if you come down, why don't you spend the night with me? I can, so many different things she started saying, and they actually offered money as well, that you can earn some quick bucks as well.
0: तो ये अगर 12 साल पहले की कहानी है और ये अनजान हाई सोसाइटी लेडी अपनी गाड़ी में आपको ये प्रोपोजिशन कर रही थी, कितने पैसे दे रही थी आपको रात के?
1: अराउंड 7-8 thousand.
0: वो आपका मन नहीं करा एक सेकंड के लिए?
1: तो मतलब someone of like that age, just started earning into the job, 7-8 grand was like
0: correct
1: good amount. मतलब मेरी भाई निकलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है. निकला, बाद में फ्रेंड्स को बोला कि भाई देख ऐसे ऐसा हुआ है. तो देन कपल ऑफ माय फ्रेंड्स से कह रहे, यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी मैन, सो मेनी थिंग्स यू कुड हैव एंजॉयड प्लस यू अर्न मनी. एंड देन यू लेटर ऑन केम टू नो दैट दैट पर्टिकुलर स्पॉट इज लाइक फेमस फॉर लाइक नाइट पिकअप पॉइंट्स एंड दिस प्रोफेशनल जिगलोस एंड नीड टू अवॉइड दिस.
0: तो आप नाइट पिकअप स्पॉट फॉर जिगलोस पर पहुंच गए. सडनली एक रात में आपकी किस्मत बदल जाती, बट यू डिसाइडेड नहीं, मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ प्यार में भरोसा करता हूँ. इज दैट राइट?
1: आई एम टू जेंटलमैन टू बी गोइंग इनटू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग.
0: ओह माय जेंटलमैन, आई हैव समथिंग फॉर यू.
2: यू've बीन रोशिफाइड.
0: अब क्योंकि मुझे आपने अपनी ये स्टोरी सुनाई एंड इट्स सच एन अडोर्ब स्टोरी, बट आई होप आपका बाद में मन नहीं डोला एंड यू डिडंट लाइक गेट टेम्प्टेड और एनीथिंग. बट व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपके पास भी मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह ऐसी ही इनक्रेडिबल स्टोरी है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड आई विल रोशिफाई यू एज वेल. नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

सच्चा प्यार जरूरत बेस्ड नहीं होता, सच्चा प्यार चॉइस बेस्ड होता है। आपके पास जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप किसे चूज करते हो वो बताता है कि आप किस से कितनी मोहब्बत करते हो। ये एक छोटा सा डायलॉग था फ्रॉम द फिल्म एम्स्टरडैम, जिसमें वो नर्स अपने पेशेंट को समझा रही है दैट ट्रू लव डज नॉट डिपेंड ऑन नीड, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस। तो वो बंदा उससे पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस इंसान को चूज कर रहे हैं हमें उसकी ज़रूरत भी है। शी सेज नहीं, ज़रूरत है वो अलग बात है, लेकिन हर बार, हर मुश्किल के दौरान, हर डिफिकल्ट टाइम के थ्रू तुम उस इंसान को बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन चूज कर रहे हो, एंड दैट इज द साइन ऑफ ट्रू लव। अब आप मुझे ये बताओ, अपनी आंखें बंद करके, हु इज दैट पर्सन हु कम्स टू योर माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट चूजिंग समवन फॉर योरसेल्फ? और वो जो भी इंसान है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं हूँ मैं आपकी ब्रोशी, आई रियली मीन दैट जॉब प्रोफाइल। तो फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक, लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट योर ट्रू लव। एंड व्हाइल यू डू दैट, जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
0: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। No loud payoff, no screaming hook, बस माहौल, the atmosphere, वो लेट नाइट loneliness, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। The writing itself feels tired, in a good way, it's exhausted, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल percussion, ambient synths, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटिफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From बंदर। नंबर

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

माशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड। कृति

और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहां प्रीतम दा की साइड पर हूं, हाँ उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlars from Dhurandhar, The Revenge. Number 8.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. नंबर 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वाज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 3।

0: थी वाओ।
1: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
2: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, you know, people, yeah. or any child wants yeah. is that if you have, आपने पैसा कमाया है, नाम कमाया है, शोहरत कमाया है, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम दैट रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
3: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
2: अरे इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही
3: मैं बड़ा ही वही हुआ। मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। And a struggle, everyone has to do struggle. You know. ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
1: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है। Dude, what a line. David sir, happy retirement. लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत, नंबर वन।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.

0: Mitchy. It's hot.
1: Do to leki mundri la de, tin to leka

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: It's hot. मिर्ची It's hot. मिर्ची It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, hamara 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Roar ka Shisha, Mitta Roar ki composition, unhi ke lyrics, pichle हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो।

Lots of right answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है. Before we move on and we play the song,

आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJ कनेगा इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ @RJKareka पर जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7 7

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वी ऑल फील लाइक कि बस यार हो गया, अब कुछ और. एंड दैट्स व्हेन आई लुक फॉर इंस्पिरेशन हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. थिंक अबाउट आर्टिस्ट लाइक हिमेश रेशमिया, अदनान सामी, उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 6.

टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna Ni Begane Baro Krishna Ni Begane.
0: गाने का नाम है कृष्णा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स. दिस सॉन्ग इज ट्रूली रेवोल्यूशनरी. आई डोंट थिंक इस गाने को हम किसी भी एक बॉक्स या एरा में फिट कर सकते हैं. ये गाना 1996 में रिलीज हुआ था, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट लुक्स लाइक आज किसी स्टूडियो से फ्रेश प्रोड्यूस होके आया है. कलोनियल कजिन्स वर डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन. एक तरफ हरिहरन जी हु इज क्लासिकली ट्रेन गजल सिंगर एंड दूसरी तरफ लेस्ली लुईस हु इज ऑल अबाउट इंग्लिश रॉक एंड रोल एंड पॉप. दोनों ने साथ में मिलकर बनाया कलोनियल कजिन्स, जिनकी साउंड आज भी रेवोल्यूशनरी है. 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक एज Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Kolonial Kozins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Kolonial Kozins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you. On our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय, माय साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी है. इट्स अनूप जैन सॉन्ग, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से, एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वे वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6। जिधर तू पीछे उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

सारे अलार्म्स तुम्हें जगाते नहीं है, कुछ ऐसे भी अलार्म्स होते हैं जो तुम्हें सोने पर मजबूर कर देते हैं, वो भी दोबारा, जैसे कि व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, वो भी स्पेशली फैमिली ग्रुप से आने वाले। पर अभी फिलहाल वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं तुम्हारी लाइफ में। मैं बोले तो प्रिसला आ चुकी हूँ लेकर तुम्हारा फेवरेट मॉर्निंग शो, नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर आकर तो कॉफी मशीन, लैपटॉप, तुम्हारा एसी, टीवी, फ्रिज सब स्ट्रेच करने लग जाते हैं। So whether you're driving to work right now या फिर घर पे बैठकर काम करने का सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों के लिए और हम ढेर सारी गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर करने वाले हैं राइट हियर राइट नाउ। मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत हुई है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, मेरा नाम है मिर्ची प्रिज ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी अ मैसेज राइट नाउ एंड स्टे ट्यून्ड and stay hot.

मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लेट्स हॉप इनटू आवर मिर्ची की टाइम मशीन एंड पता करते हैं आज के दिन क्या हुआ था। लेट्स बिगिन इन 1756 वेयर फोर्ट विलियम इन कोलकाता वाज सरेंडर्ड टू नवाब सिराजुद्दौला। एंड लेट्स जस्ट से थिंग्स एस्केलेटेड फास्टर देन एनीथिंग एल्स। फास्ट फॉरवर्ड टू 1924 व्हेन द यूएस साइंड द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ऑफिशियली ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू नेटिव अमेरिकन्स बोर्न इन द कंट्री। देन गेम 1946 when Italians said, you know what, let's try something different. They voted to end the monarchy and created the Italian Republic. 1953 May, the world watched history in real time as Queen Elizabeth II was crowned in London. It became the first major international event to be televised globally. And then in 1966, Surveyor 1 landed on the moon. Jumping to 1997, Timothy McVeigh was found guilty for the Oklahoma City bombing, bringing an important moment of justice after the tragic chapter in American history. And finally, 2014 May, Telangana officially became India's 29th state. Aur isi tarah ke aur fun facts chahiye to mujhse touch mein raho. Mera naam hai Mirchi Priz, that is MIRCHIPRIS, Instagram aur X par. Wahan par jaake mujhe follow karo aur WhatsApp par mujhse baat kar sakte ho 9033 Mirchi par. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मर आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी. ही रिसेंटली स्पोक अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप विद सुष्मिता सेन एंड ही हैड वन मैसेज वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर. ही डजंट थिंक शी डिजर्व्ड द गोल्ड डिगर लेबल दैट सम पीपल थ्रू अराउंड व्हेन देयर रिलेशनशिप बिकेम पब्लिक बैक इन 2022. इन फैक्ट ललित जोक्ड दैट सुष्मिता ऑफन पेड फॉर थिंग्स, सेइंग ही फेल्ट मोर लाइक अ केप्ट बॉयफ्रेंड. इफ एनीवन वाज डिगिंग फॉर ट्रेजर्स, he joked that he was the diamond digger. And when talking about why the relationship ended, he kept it simple. Long distance can be tough. Honestly, if maintaining a relationship across time zones was easy, half of us, they say, wouldn't have 6 missed family video calls and 12 beta never call messages waiting for us. And the takeaway, every relationship has its own story. And sometimes the internet only sees one chapter while the people involved know the whole book. What do you think about it? Long distance hona chahiye relationship ya nahi? Let me know, DM karke mujhe batao. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and Twitter. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड हियर्स टुडेज सीन वेदर वाइज। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ कूल 49 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स प्रीटी सनी, लेकिन थैंक्स टू द विंड इट्स फीलिंग मोर लाइक 48 डिग्रीज। एंड गुड न्यूज ये है कि नो रेन, 0 मिलीमीटर्स इन द लास्ट 24 आवर्स एंड 0 इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो अपने अम्ब्रेला को आज ऑफिशियली घर पर छुट्टी दी जा सकती है। एंड नाउ टेम्परेचर वाइज वी आर स्टार्टिंग द डे विथ 47 degrees Fahrenheit and climbing all the way to a beautiful 77 degrees Fahrenheit. And this afternoon, 2 baje se lekar 5 baje ke beech mein expect a little bit of partly cloudy skies. Then 5 baje ke baad se clouds will get a little more serious and they'll turn mostly cloudy. वैसे बहुत ज़्यादा dramatic नहीं होने वाले हैं आज, तो Instagram पर light filter लगाकर selfie लगाना तो बनता है। And आज का high is actually pretty similar to yesterday's. कल का highest था 73 degrees Fahrenheit और आज we are aiming for 77 डिग्रीज फारेनहाइट। तो याद रखो बाहर निकलते टाइम SPF 50+++, साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनो और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो और मिर्ची सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट कर सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
1: Mirchi, it's hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
0: A free Indian mango party in San Francisco has gone absolutely viral during huge crowd and even longer lines. And honestly, if you've ever tasted a juicy Alfonso or sweet Kesar, you already know this wasn't a queue. It was a pilgrimage. People got to sample some of India's most beloved mango varieties. And one attendee even called them the best mangoes I've ever had. Videos from the event showed crowd celebration and enough mango love to make every Desi person proudly say, मेरा भाई मैंगो लवर है। एंड यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट, नो मैटर हाउ लॉन्ग वी हैव लिव्ड अब्रॉड, वन बाइट ऑफ अ प्रॉपर इंडियन मैंगो कैन इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट अस बैक टू समर वेकेशन। स्टिकी फिंगर्स, पावर कट्स, कजिन्स एंड इन सब के साथ हमारे फैमिली मेंबर्स भी सर्वाइव कर रहे थे। एंड नाउ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड ड्रॉप मी अ हाय। माय हैंडल नेम इज मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Hey there, मैं हूँ प्रसन्ना, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है बर्थडे शाउटआउट्स देने की। We've got Wayne Brady, Kevin Feige, Dennis Haysbert, Morena Baccarin, Awkwafina, Justin Long, Zachary Quinto, Dana Carvey, Charlie Watts, Fabrizio Moretti, Thomas Hardy, Marcus Desade, Sergio Aguero, Rafael Nadal and Steve Waugh। और अगर तुम्हारे भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम भी मेन कैरेक्टर एनर्जी में आज केक खाना, कैलोरीज की बिल्कुल परवाह मत करना। एंड वंस अगेन आई एम विशिंग यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Hey there, my gold lovers. मैं हूँ प्रसुला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है.
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540 $4,540 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है. जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं. कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझे कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू
0: एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033-6-4-7-2-4. Stay tuned and stay hot. This is something.

0: on my channel.
1: 98.3 98.3 98.3 Mirchi. It's hot.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स का. सबसे पहले, द यूएस मिलिट्री हैज कैरिड आउट व्हाट इट कॉल्ड सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स इन सदर्न ईरान, टारगेटिंग मिसाइल लॉन्च साइट्स एंड बोट्स लेइंग माइंस नियर बंदर अब्बास एंड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. ऑफिशियल्स सेड द स्ट्राइक्स वर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ट्रूप्स व्हाइल नेगोशिएशंस आर रिपोर्टेडली स्टिल कंटिन्यूइंग. एंड नंबर टू पर, देसी मॉम्स एवरीवेयर आर ऑफिशियली विनिंग. जस्ट डेज आफ्टर 23-year-old तुषार कुमार बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन मेयर्स इन द यूके, his mom Parveen Rani also became mayor. The family moved from Rohtak, Haryana to the UK in 2013, and now both mother and son are making history together. And number three per, Taiwan has reportedly overtaken India in market size despite having a much smaller GDP. Financial experts are discussing how Taiwan's market capitalization has now edged slightly ahead. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle name hai Mirchi Pris, that's MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले रिपोर्ट से द यूएस इज अर्जिंग ओमान, विच हैज लार्जली मेंटेन्ड अ न्यूट्रल पोजीशन, टू चूज अ साइड एंड रिड्यूस टाइज विद ईरान। द डिस्कशन कम्स अमिड टेंशन्स सराउंडिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स। नंबर 2 पर नेपाल्स रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट रवि लमिशा ने रिसीव्ड क्वाइट द वेलकम एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स। वी टॉकिंग रेड कार्पेट, फ्लावर पेटल्स, ढोल एंड डांसिंग। एंड नंबर 3 पर अ मोर सीरियस अपडेट फ्रॉम भोपाल, अ की विटनेस इन द ट्विशा शर्मा केस। अ की विटनेस इन द ट्विशा शर्मा डेथ केस हैज अलेज्ड दैट ही वाज कन्फ्रंटेड एंड थ्रेटन्ड बाय इंडिविजुअल्स कनेक्टेड टू द अक्यूज्ड। अथॉरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। एज ऑलवेज द लीगल प्रोसेस शुड बी अलाउड टू टेक इट्स course, and everyone's safety and right to testify freely remains important. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Prisala tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो देयर माय राशिज ओनर्स, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड यू गेस्ट इट राइट, इट्स टाइम फॉर स्टार्स की बात।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, पीपल प्लीजिंग बंद कर दो थोड़ा सा, आज अपनी हैप्पीनेस पे भी इन्वेस्टमेंट करो बॉस। लकी कलर इज चेरी रेड, लकी नंबर इज 25। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज इम्पॉसिबल वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी से ऑफिशियली डिलीट हो गया है, गो क्रश इट पोलाइटली और ड्रामेटिकली। लकी कलर इज मिडनाइट पर्पल, लकी कलर इज 66। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज का मंत्रा इग्नोर डाउटर्स लाइक स्पैम कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स, फुल फोकस मोड ऑन करो। लकी कलर is burnt orange, lucky number is 14. Capricorn yani makar rashi, if someone isn't matching your hustle, emotional uber ride cancel kar do, energy expensive hoti hai, spend it wisely. Lucky color is steel gray, lucky number is 31. Aquarius yani kumbh rashi, time to declutter your room and maybe your situationship too, emotional spring cleaning activate kar lo. Lucky color is aqua mint, lucky number is 9. And last but not the least, Pisces yani mean राशि, आज समवन विद मैचिंग वाइब्स मे एंटर योर ऑर्बिट, कुड बी फ्रेंडशिप, कुड बी रोमांस और जस्ट कुड बी अ फेलो फूडी। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 72। एंड ये याद रखो, हॉरोस्कोप फ्यूचर प्रिडिक्ट करे या ना करे, तुम्हें अपनी लाइफ में डिसीजंस खुद लेने हैं। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, जाकर मुझे फॉलो भी कर लो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

0: पुरानी यादों में ऐसा क्या होता है कि हम हमेशा उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एज इफ ये पुरानी यादें ना होकर मैग्नेट हो. वेल, ऑन अ रीसेंट ट्रिप टू हैदराबाद, आई एक्चुअली फाउंड द आंसर टू इट.
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना.
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sarah, aapki 90s ki yaadon ka pitara, and now you tune in with me on Mirchi. And on my recent trip to Hyderabad, mujhe ek baat samajh mein aayi ki hum purani yaadon ki taraf khinche chale jaate hain because of the reason ki hum purani yaadon mein comfort paate hain, sukoon paate hain, aur tabhi hum chahte hain ki yaar purani yaadon se jude koi bhi kisse ho, koi bhi baatein ho, koi bhi jagah ho, kuch bhi ho, hame wahan par jaakar unko relive karne mein bada maza aata hai. Aur jab ab ki baar main Hyderabad gayi na, तो एक्चुअली मैंने पुरानी यादें जी. कैसे? क्योंकि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में हम अक्सर वहाँ जाया करते थे. मेरी दो दो खालाएं वहाँ पे रहा करती थी. फिर हम सब बड़े हुए, बिजी हुए, कजन्स ने शहर बदल लिए, हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए, हैदराबाद जाना ही नहीं हुआ. और अब जब इतने सालों बाद मैं वहाँ गई ना, तो मैंने एक चीज डिसाइड करी कि मैं ना कुछ नया नहीं एक्सप्लोर करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द ओल्ड मेमोरीज जो हम तब किया करते थे जब हम बच्चे थे. तो मैंने उन्हीं जगहों पर चाट खाई, उन्हीं जगहों पर आइसक्रीम खाई जहां से हम बचपन में खाया करते थे. हालांकि अब वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है, लेकिन यादें तो मेंटेन है यार. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरीज आई विजिटेड ऑल दोज एरियाज, ऑल दोज प्लेसेस. उन्हीं गली कूचों में मैं घूमी जहां पर बचपन में हम घूमा करते थे. हालांकि आज उन जगहों पर मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, एक काम जरूर था, मेरी यादों को टटोलना, जो मैंने किया. और बड़ा सुकून मिला यार मुझे ये सब करके. क्या है कि पुरानी यादों के अंदर ये जो कंफर्ट होता है ना, इट्स मोर लाइक अ कुशन देन एनीथिंग एल्स. एंड आपको पता होता है कि ये कंफर्ट का श्योर शॉट फॉर्मूला है कि अगर इस कुशन पे गिरे ना तो चोट नहीं लगेगी. इस कुशन पे गिरे कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, वो डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी जी चुके हैं. एंड नॉस्टैल्जिया डेफिनेटली फील्स लाइक होम. तो चलो फिर मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालूं, वही पुरानी यादों को ताजा करते हैं और चलते हैं अपने कंफर्ट जोन में. और इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

98.3 Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये गाना, इस गाने पे तो झूमता है आज भी सारा।

0: राम जी।
1: मिर्ची VCR।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। याराना मूवी का ये गाना हैज बीन अ सुपर डुपर हिट सिंस इयर्स, गया ही नहीं हमारी प्लेलिस्ट में से। आज भी ये गाना चल जाता है ना तो सब नाचने लग जाते हैं लाइक क्रेजी। बट यार ये गाना जो था, विच वाज संग बाय कविता कृष्णमूर्ति, इस गाने को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला था। एंड इनफैक्ट इस गाने में जो कोरियोग्राफी थी सरोज खान जी की, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। ऊपर से माधुरी दीक्षित का डांस, तो चार चांद तो लगने ही थे इस गाने को। वेल, ये जो मूवी थी याराना, इसके बारे में एक बात है जो मुझे आज जाके पता लगी है, which is कि दिस फिल्म की स्टोरी was inspired and adapted from a Hollywood film की स्टोरी, which was Sleeping with the Enemy, जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स थी। अब तो ये मूवी देखनी पड़ेगी 100%। एंड ऑल्सो इस फिल्म के अंदर 1977 की एक बॉलीवुड क्लासिक फिल्म हुआ करती थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इस फिल्म से भी कुछ इधर उधर छोटी मोटी इंस्पिरेशन ली है, और जिन्होंने 1977 की वो फिल्म देखी है उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें इधर आई है याराना में वहां से उठकर। मजे की बात तो ये है कि इनिशियली जब इस फिल्म की कास्ट डिसाइड हुई थी तो गोविंदा को अप्रोच किया गया था फॉर द मेन लीड, ऑफ कोर्स ऑपोजिट माधुरी दीक्षित, लेकिन फिर स्केड्यूलिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद जैकी श्रॉफ का नंबर लगा, लेकिन फिर अगेन उनकी डेट्स का भी इशू होने लग गया। एंड फाइनली ऋषि कपूर स्टेप्ड इनटू द रोल। इनफैक्ट जो रोल राज बब्बर ने प्ले किया है उसे कमल हसन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू पोर्ट्रे अ नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन एक बात ऐसी है जो शायद आपको नहीं पता होगी कि याराना मूवी के बिहाइंड द सीन्स में वरुण धवन भी है। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: याराना मूवी की शूट के दौरान देयर वाज दिस वन सीन जो कि ट्रेन में शूट होना था पब्लिक के बीच में, और पब्लिक की अटेंशन अवॉइड करने के लिए ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित ने क्या किया पता है आपको?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पब्लिक के बीच में पहुंचे भेस बदल कर। दैट वाज दे वर वेयरिंग बुरकास। हैदराबाद में ये शूट हो रहा था एंड ट्रेन के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, और इन लोगों ने जब ये शूट किया तब इन लोगों ने बुरका उतार दिया होगा ऑफकोर्स, लेकिन पब्लिक को अवॉइड करने के लिए बुरका पहने हुए थे ये लोग। हुआ ये कि जब तक इनकी ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंची तब तक ऋषि कपूर का बुर्का उतर चुका था, जिसकी वजह से कुछ बहुत ही मजाकिया किस्से वहां पर हुए जो की पूरी टीम ने एंजॉय किया। हे एंड बाय द वे, देयर वाज आल्सो दिस वरुण धवन नाम का एक छोटा सा लड़का जो कि अपने पापा इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के साथ साथ जगह जगह फिर रहे थे, एंड ही वाज प्रेजेंट बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस फिल्म। इनफैक्ट जब इस फिल्म की शूट स्विट्जरलैंड में हो रही थी एट दैट टाइम वरुण धवन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ये लोग बस में आया जाया किया करते थे, एंड वरुण धवन सबको एंटरटेन किया करते थे एंड यूज्ड टू डांस अ लॉट विद माधुरी दीक्षित। और जब वो बड़े हो गए और माधुरी दीक्षित से मिले तो माधुरी ने उनको याद दिलाया कि कैसे वो डांस किया करते थे, और उस तरीके का डांस माधुरी ने कहा कि उन्होंने उनका ऑन स्क्रीन भी नहीं देखा है जिस तरीके का उन्होंने उस जमाने में बस में किया था। अगर मैं वरुण धवन की जगह होती ना तो शायद मैं ये बोल चुकी होती कि बचपन में किस्मत का खेल नहीं पता था ना, तो बचपन में जो डांस किया वो बहुत ही दिल से किया। बड़े होते होते हमारा जो डांसिंग टैलेंट है वो कहीं और निकलने लग गया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि बड़े होने के बाद हम किसी के गाने पर नहीं किस्मत के इशारों पर नाचने लग जाते हैं और बेस्ट डांस वही निकल के आता है। बॉस, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: क्या आपको ये आवाज सुनकर कुछ याद आया? पहले अगर नहीं आया तो ये आवाज आपको जिब्रिश लग रही होगी, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आप डेफिनेटली सारे डॉट्स कनेक्ट करके याद कर पाओगे कि अच्छा, ये तो वो बात कर रही है सारा।
2: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये आवाज पिंगू की है। याद है पिंगू? DD1 पर ये छोटा सा पेंगुइन अपनी मस्ती और शरारतों से हमें कितना हंसाता था, दिल खुशी से झूम उठता था। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ एक्सप्रेशंस और मजेदार साउंड्स के साथ ना, पिंगू ने हम सबका दिल जीत लिया था। पिंगू के साथ उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी पापा और वो क्यूट से आइसबर्ग हाउसेस, सब कुछ कितना प्यारा था ना। मुझे ना आज भी पिंगू वाला एनिमेशन बड़ा प्यारा लगता है यार। क्या आपको याद है जब पिंगू अपनी छोटी बहन को परेशान करता था, तब वो अपने पापा से डांट भी खाता था। वो मासूमियत और वो मजाक से भरे हुए पल आज भी हमारे बचपन की प्यारी सी यादों में से है। और इस शो के एनिमेशन का मुझे वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जहाँ पर इन पेंगुइन्स का टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाने वाला सीन होता था। सब खाना खाने लगते थे और ये सारी की सारी फैमिली इतनी क्यूटली टेबल पर बैठकर फिश खा रहे होते थे। आज भी मैंने जब ये एनिमेशन शो देखा ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज का एहसास हुआ और वो था सुकून। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, on Mirchi, it's hot।

0: लता जी और उदित जी की आवाज में दिस गाना इज सच अ गाना जिससे कि हम कभी नहीं उभर पाए यार. मतलब ये जो म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने, इट वॉज समथिंग विच नो वन कुड एवर रिक्रिएट. रिक्रिएट तो चलो दूर की बात है, मगर इसके आसपास के बराबर का भी कुछ म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा निकल के आया. आई तो आई एम जस्ट इन लव विद दिल तो पागल है का म्यूजिक और उसके गाने एंड ऑफ कोर्स द फिल्म एज वेल. इट्स अ पैकेज डील एंड आई कैन जस्ट नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, सो आई बेटर मूव ऑन.
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And before मैं again दिल तो पागल है के बारे में blabber करने लग जाऊँ, अच्छा यही होगा कि मैं अगली बात छेड़ देती हूँ, which is मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों की धुनें मैं आपस में मिलाकर आपके लिए चला देती हूँ और आपको गेस करना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी वो कौन से दो गानों की है. तो ये अभी गो आज की धुनों के साथ.

बस जी, अब मुझे डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गरम मसाला का ये जो गाना है ना, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी खबर भी कुछ गरम मसाले से कम नहीं है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, गरम गरम मसाले वाली खबर ये है कि दिस गाना फ्रॉम द फिल्म गरम मसाला इज नॉट एन ओरिजिनल। वेल, द डील इज कि ये गाना एक्चुअली इंस्पायर्ड है फ्रॉम एन इजिप्शियन सॉन्ग जो कि 2001 में रिलीज हुआ था, वाला अला बल हो, विच वॉज संग बाय अमृत दियाब, हु इज एन इजिप्शियन सिंगर एंड कंपोजर, एंड द सॉन्ग इज दिस वन। ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले इस गाने के कंपोजर को ढूंढने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स या तो वो प्रीतम दा होते या तो वनु मलिक, एंड इस केस में इट इज प्रीतम दा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है सोनू सूद जो है, he has been saving lives since 1997.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब आप सोचोगे कि हाँ क्या बात करी हो यार सारा, सोनू सूद का दिल इतना बड़ा है कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले से ये सारे काम कर रहे थे. तो वेल एक्चुअली वो जो जिंदगियां बचाने का काम कर रहे थे ना, वो नागराज बनकर कर रहे थे. हाँ, आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि मुझे भी नहीं था और हमने ये रियलाइज भी नहीं किया कि नागराज कॉमिक का एक टेलीविजन एड आया करता था और उस टेलीविजन एड में हरे कपड़े पहने हुए जो नागराज बंधु थे ना, दैट वॉज सोनू सूद. रिवाइज करने के लिए आपको एक बार एड सुनाती हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए.
3: नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नार.
1: अभी कुछ याद आया? Well, इस एड में वो जो हीरो हुआ करते थे वो अपने सोनू सूद ही हुआ करते थे यार. अगर आपको ये बात अच्छे से देखनी है और फिर बोलना है कि अरे हाँ यार, तो YouTube पे जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा ये एड. अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Anguthi Wali Jelly.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचते हैं कि खुद को डायमंड वाली अंगूठी दिलाएं, लेकिन इस दौर में भी तुम याद आई जाती हो यार। तुम्हें याद करके ना बचपन की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। वो छोटी रंग बिरंगी नर्म नर्म और मीठी जली जिसे उंगलियों में पहनकर राजा महाराजा जैसा महसूस करते थे यार। मैं अक्सर ना तुम्हें ट्यूशन पहनकर चली जाती थी, होमवर्क करते करते चुप चुप के तुम्हारे चटकारे लिए जाते थे, और तुम्हारी बेस्ट बात भी यही थी कि तुम्हें खाते खाते हाथ गंदे और चिप चिप नहीं होते थे। टॉफी और चॉकलेट के बीच तुमने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। जेब में चिल्लर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खरीदने की जिद कभी कम नहीं हुई। दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें उंगलियों में पहनना और फिर धीरे धीरे तुम्हें चाट चाट कर खाना, क्या मजा आता था यार। आज के फैंसी चॉकलेट्स और स्नैक्स के बीच में तुम कहीं खो तो गई हो, लेकिन तुम्हारी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश फिर से वो बचपन लौट आए और हम तुम्हें वैसे ही उंगलियों में पहनकर खिलखिलाते हुए तुम्हारे चटकारे ले सके। तो सच बता रही हूँ, आज ये जो हम सोने चांदी की अंगूठियां पहनते हैं ना, उन्हें भी एक पल साइड में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी मैं। थैंक यू हमारे बचपन को इतना मीठा और इतना रंगीला बनाने के लिए। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रॉबर्ट उलमान की आवाज में ब्लफ मास्टर मूवी से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, ये वो गाना है जो जब रिलीज हुआ तो गाने में बड़ी दिक्कत आई भाई, तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन गाना गाने में मजा भी उतना ही आता था यार, क्योंकि इसका म्यूजिक इतना जबरदस्त लगता है ना कि कोई इसे गुनगुनाए बिना रह नहीं सकता था। एंड द ट्रैक इज बुरे बुरे हम हम हम शैतान जर जर बचना रे हमसे। ये इस ट्रैक की खास बात थी कि इस ट्रैक में लिरिक्स हमें सिवाय इन लिरिक्स के और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी हमने बाकी सब कुछ ना रट्टाफाई कर लिया था। वेल, बेसिकली इस गाने की काफी लंबी लिरिक्स जो है वो इंडियन है ही नहीं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, बल्कि पर्शियन लैंग्वेज में है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें कभी वो समझ में ही नहीं आया। लेकिन फाइनली मैंने आपके लिए इन लिरिक्स का मतलब जो है वो निकाला है। एंड इस गाने के अंदर बेसिकली बात की जा रही है कि बंदा जो है वो बंदी को बता रहा है कि देयर वाज अ टाइम एंड आई लव्ड यू, और मैं ना तुम्हारे साथ बड़ा खुश हुआ करता था, लेकिन फिर तुम जो है ना नॉटी हो गई, बदमाश हो गई, और तब से मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे करीब नहीं आओगी अब। और ये जो बात कही गई है ना कि बोरो बोरो दिलम तोरा तोरा ना मिखाद, इसका मतलब ये है कि जाओ जाओ यार, मेरे दिल को तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू सी यू एनीमोर। माय गॉड, ये हंसी मजाक में कितनी गहरी बात कह गया गाना यार। मैं तो आज तक इस गाने को ऐसे ही लिया करती थी कि कोई फनी बात कह रहे हैं यार, कुछ नॉटी नॉटी बात बंदा जो है अपने बारे में कह रहा है, लेकिन यहाँ तो बेचारे बंदे का दिल ऐसा टूटा हुआ है कि वो बंदी से ये सारी सीरियस बातें कर रहा है यार। उफ, ये प्यार भी ना, एक बार इसके चक्कर में पड़ जाओ और दिल तुड़वा लो ना, तो आपके इमोशंस कहना कुछ चाहते हैं लेकिन इन इमोशंस की धुनें जो हैं ये कुछ और ही निकल के आती हैं। यानी कि लिरिक्स तो सीरियस हैं लेकिन इमोशंस की धुनें इतनी फन होंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिल टूटने वाले गाने के ऊपर पब्स में लोग नाच भी लेंगे। आज जब इस गाने के मतलब पता लगा है ना मुझे, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि हाय, ये तो नाचने वाला गाना है ही नहीं यार। बट स्टिल, इस गाने के म्यूजिक को 10/10 देते हुए अब ये गाना मैं आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं आपको यहाँ के अलावा तो मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट। Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on.

हर कलाकार के दो चेहरे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक चेहरा प्रोफेशनल लाइफ का, एक चेहरा पर्सनल लाइफ का, जिसे वो अक्सर छुपा छुपा के रखते हैं या उतना ही दिखाते हैं जिससे उनके प्रोफेशनल लाइफ के चेहरे पे कोई असर ना पड़े। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस मामले में बिंदास निष्कपट होते हैं। वो जैसे पर्सनल लाइफ में होते हैं वैसे ही खुद को बताते हैं। और ऐसे ही कलाकार थे वो जिन्हें हिंदी सिनेमा का फर्स्ट शोमैन कहा जाता है, राज कपूर साहब, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ हिम। उनमें वो सारे फ्लॉज थे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना। वो लेडीज से फ्लर्ट करते थे, कई बार फ्लर्ट करते करते लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स की, रिलेशनशिप्स के बारे में हम सबने पढ़ा सुना है। और उन्होंने इन सब बातों को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो था उनका क्राफ्ट, सिनेमा, जिसने उनकी आवारगी को एक सलीका दिया। वो शायर निदा फाजली की कुछ लाइन्स हैं कि बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने राज कपूर के साथ काम किया हुआ है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1982 की फिल्म प्रेम रोग में सेवेंथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनीस बज़मी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर का कितना खौफ रहता था सेट्स पे।
1: बहुत ही टेरर था उनका, कब क्या होगा वही नहीं पता होता था। एंड थोड़े शॉर्ट टर्म भी थे, जब एडिटिंग करते थे तो वो शराब छोड़ देते थे एंड सिगरेट छोड़ देते थे। जब तक फिल्म चाहे वो एक महीना हो, दो महीना हो, दस महीना हो, और दोनों चीजों से बहुत प्यार था उनको, तो वो एक इरिटेशन लेवल भी जो है ना वो उस कदर होता था कि आप मतलब बस नाखून जितनी खाली गलती कीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी दशा देखिए क्या होगी।
0: पर एक चीज जरूर होती थी, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट्स पे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा डांट डपट मारपीट हो, बाद में मजा भी उतना ही होता था बिकॉज पार्टीज इतनी सारी होती थी कर्टसी राज कपूर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @RG.charu, RG.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

ये जो इंडिया का रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो राज कपूर साहब को भी जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सीन कुछ यूं था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे रशिया और इंडिया के बीच अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे, बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जिसकी वजह से इंडियन फिल्में रशिया में रिलीज हुई। एंड समहाउ राज कपूर के किरदार जो उन्होंने अपनी फिल्मों में प्ले किए थे, उन किरदारों की इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, उनकी स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन से रशियन लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि उनको एक अलग तरह की उम्मीद और खुशी मिली उन फिल्मों से, उन किरदारों से। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राज कपूर बिकेम दिस सेंसेशन, दिस आइकॉन इन रशिया। मतलब राज कपूर को बिना वीजा रशिया में एंटर करना अलाउड था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि राज कपूर जब मॉस्को में एक टैक्सी में बैठे तो वो टैक्सी सड़क पे नहीं हवा में चल रही, क्योंकि लोगों ने खुशी में उस टैक्सी को उठा लिया था। राज कपूर के गाने बिकेम एंथम्स इन रशिया, जो आज भी वहाँ प्ले होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: रणधीर कपूर को डायरेक्शन सीखने के लिए राज कपूर साहब ने डायरेक्टर लेक टंडन के पास भेजा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो रणधीर कपूर जब ये डायरेक्शन सीखने के लिए घर से निकलने लगे तो राज कपूर साहब ने उनको क्या कहा? रणधीर कपूर ने एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना, ये वैल्यू सिस्टम है। राज कपूर जी ने हमको सिखाया कि पैसों की कदर होनी चाहिए। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, पर जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। कोई भिखमंगा आया तो हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है। घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से, और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी और लेके मेरे पिताजी के पास गया। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया और कमाओ और गाड़ियां लो। पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर है, एक तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है, ये तुम्हें जरूरत है।
0: क्या ही मजा मस्ती ड्रामा चलता होगा कपूर हाउस होल्ड में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डीडीएलजे फिल्म में शाहरुख खान का किरदार राज जो वो तुनतुना बजाता है, अब तो हम सब जानते हैं कि उसको मैंडोलिन बोलते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये फिल्म शूट हो रही थी ना, तो शाहरुख खान ने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: मैंने पूछा था कि यार आदि, व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन अ मैंडोलिन? उन्होंने मुझे बताया कि मैंडोलिन उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। उसका एक बड़ा ही कमाल का रीजन है कि व्हाई ही लाइक्ड अ मैंडोलिन। आदि हैज ऑलवेज बीन अ मिस्टर राज कपूर फैन, उन्हें बड़े अच्छे लगते थे। उन्होंने मुझे बताया मोस्ट ऑफ द म्यूजिक और लॉट ऑफ द म्यूजिक दैट इज यूज्ड इन मिस्टर राज कपूर्स फिल्म्स was from the mandolin.
0: Well, इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज कपूर के नाम पर ही था। एंड राज कपूर खुद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, अकॉर्डियन, बैकपाइपर, पियानो, हारमोनियम, तबला एंड मैंडोलिन भी। और उनकी फिल्मों के गानों में जो मेरा फेवरेट है जिसमें मैंडोलिन यूज हुआ है ना, वो ये वाला है जो अब हम सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: राज कपूर का असली नाम या पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो राज उनका मिडिल नेम था और उनके असली नाम पे ही रणबीर कपूर का नाम है। और एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने ना राज कपूर साहब के साथ जुड़ी अपनी एक बचपन की बहुत ही प्यारी याद शेयर की थी, सुनिए।
1: मिस्टर राज कपूर पास्ड अवे व्हेन आई वाज रियली यंग, आई वाज अराउंड 6 इयर्स ओल्ड, बट आई रिमेंबर दैट व्हेन वी वर रियली यंग, ऑल ऑफ अस, माय सिस्टर, मी, करीना, लोलो, माय अदर कजिन्स फ्रॉम दिल्ली, ही यूज्ड टू कॉल अस टू द रूम, यू नो, एंड ही हैड ऑल दीस टॉफीज, यू नो, व्हिच ही यूज्ड टू बाय व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, एंड ही यूज्ड टू हाइड इट इन हिज रूम। सो ही यूज्ड टू लाइक टेक ऑल सलाम्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मेक अस डू सलाम, give him a kiss, do a little dance for him, and then he used to give us one toffee. And that getting that toffee was a very big deal. You know, I still remember that taste.
0: आपको पता है, जब जब रणबीर से राज कपूर के ऊपर बायोपिक बनने की बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जब तक किसी बायोपिक को आप ईमानदारी से न बना पाए तब तक नहीं बनाना चाहिए, और अगर ये बायोपिक ईमानदारी से बना दी गई तो शायद कपूर खानदान ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। चलिए, बायोपिक न सही लेकिन उनकी अमेजिंग फिल्में हैं जिसके अमेजिंग गाने हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर की वो साइड जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अबाउट दी अदर साइड ऑफ राज कपूर। राज कपूर में वो सारे ऐप थे जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे और कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स, उनके रिलेशनशिप्स की बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे इंटरव्यूज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज में है। जैसे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि जब राज कपूर वैजयंती माला जी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे तब उनकी मॉम यानी कि राज कपूर की वाइफ उन्हें यानी कि ऋषि कपूर को लेकर कहीं और रहने चली गई थी। इस रिलेशनशिप को वैजयंती माला ने कम्प्लीटली डिनाई किया और ये कहा कि ये संगम फिल्म को प्रमोट करने के लिए आरके फिल्म्स की पीआर टीम का स्टंट था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जिन भी रिश्तों में राज कपूर इन्वॉल्व हुए ये नरगिस जी के साथ ब्रेकअप के बाद के रीबाउंड रिलेशनशिप्स थे। वो मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं कि लिपटा है मेरे दिल से किसी राज की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना ही नहीं है। अजब रवायत है मोहब्बत की, उसे पाना भी नहीं है, उसे खोना भी नहीं है। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म का म्यूजिक कैसे बना था?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पर राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने ये बात शेयर की थी, सुनिए।
2: एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे, वहाँ रविंदर जैन जी वो गाना गा रहे थे, एक राधा एक मीरा, सुना वाह वाह वाह वाह, बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है, बोले ये गाना मेरा हो गया। वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रहे हैं मुझे दे दो। अगले दिन ऐसा करो डब्बू, घर में बोल देना कि शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो सिर्फ शहर में मिल सकते हैं। और ठीक है, मयूरी क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, सितार आई है, सारंगी आई है, पापा आ रहे हैं ना, आने दो, हुआ है साथ में रविंदर जैन भी आ रहे हैं।
3: मुझे ये दिन याद है।
2: तो मैंने नमरा चादर लगाओ, इधर तकिए वकिए लगाओ, सब बैठे, दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया, तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है, जो 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के।
1: एंड दैट इज हाउ रविंद्र जैन को साइन किया गया था इस फिल्म के आइकॉनिक म्यूजिक के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

आपको पता है एक्टर नील नितिन मुकेश एक बार बचपन में राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसमें एक गाना आया तो नील की फैमिली ने उनको बताया कि ये गाना तुम्हारे दादू मुकेश गा रहे हैं, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो राज कपूर गा रहे हैं। हम सबको बचपन में ऐसा लगता था ना कि वो जो एक्टर्स गाना गा रहे हैं वो खुद गा रहे हैं, और कुछ आवाजें एक्टर्स पर ऐसे सूट होती थी जैसे उनके लिए ही बनी हो, मेड इन हेवन। जब मुकेश जी का निधन हुआ था 1976 में तो राज कपूर रो पड़े और बोले कि मैंने अपनी आवाज खो दी। 100 से भी ज्यादा गाने गाए थे मुकेश ने राज कपूर के लिए। पहला गाना जहां 1948 में आग फिल्म के लिए था, वहीं आखिरी गाना 1975 में धर्म करम मूवी के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। अच्छा, ये सारे गाने जो मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए गाए, उनमें से सबसे प्यारा पता है कौन सा है? अनाड़ी फिल्म का ये वाला। सुनिए मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: याद कर रहे हैं हम उनको और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ राज कपूर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज कपूर साहब को गुस्सा बहुत आता था, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर थे वो, खास करके जिन फिल्मों में उनके बच्चे काम कर रहे होते थे। एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म बॉबी के पहले सॉन्ग शूट के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मेरी जिंदगी का पहला गाना था, मैं शायर तो नहीं, so I was very excited. I got on the sets. I saw my father there and that little insecurity crept into me. Where is the dance director? My father has to call him Saab. I said, Saab, choreographer, dance director नहीं है। He said, choreographer, dance director की क्या जरूरत है? गाना कैसे गाऊंगा? कौन करेगा? खड़े रहो उधर। I said, मैं कैसे कर सकता हूँ? Done it. So do it for the first time. करो। I was looking around. He said, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई choreographer या dance director बुलाऊंगा, तुम नए हो, वो जो करेगा तुम उसकी नकल करोगे, और जो नकल होगी उस आदमी ने शशि कपूर, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी सबको वही करवाया होगा, और जब तुम करोगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो शशि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। तो मेक योर ओन आइडेंटिटी इन योर लाइफ, गो स्टैंड देयर एंड सिंग द सॉन्ग योरसेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न।
0: ओ भाई भाई भाई, सुन के ही मुझे तो गूज़बम्स आ गए, डर लग गया एकदम से। बट दैट इज हाउ ही वॉज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं द अदर साइड ऑफ राज कपूर साहब। और ये बात तो जग जाहिर है कि राज कपूर साहब और नरगिस जी बहुत लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में थे। 21 साल की उम्र में राज कपूर नरगिस जी से तब मिले थे जब वो 16 साल की थी और उनकी इस मुलाकात को उन्होंने बॉबी फिल्म के सीन में रिक्रिएट किया था जब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात होती है। उसी दौरान लेट 40s में दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी दोस्ती, उनके बीच अट्रैक्शन की शुरुआत हुई। राज कपूर शादीशुदा थे तो भी नरगिस जी उनसे शादी करना चाहती थी। वेल, हमारे देश में मैरिज एक्ट 1955 में आया, उससे पहले एक मर्द का एक से ज्यादा शादियां करना बहुत ही नॉर्मल माना जाता था। राज कपूर नरगिस जी से कहते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया। और इस तरह से दिल टूटने के बाद नरगिस जी राज कपूर की जिंदगी से और आरके स्टूडियोज की फिल्मों से हमेशा के लिए चली गईं। इसके 2 साल बाद जब उन्होंने सुनील दत्त से शादी की तो ये बात राज कपूर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी नाजुक सी मेल ईगो काफी हर्ट हो गई। वो शराब के नशे में धुत रहते थे, बदहवासी में सिगरेट से अपना हाथ जला लेते थे, किसी के भी कंधे पे सर रख कर रोना शुरू कर देते थे। काफी इंटरव्यूज में उन्होंने नरगिस जी का नाम डायरेक्टली ना लेते हुए उन्हें काफी बुरा भला कहा। अक्सर वो प्यार बहुत टॉक्सिक हो जाता है जिसको मंजिल नहीं मिलती है। ऐसा ही था नरगिस जी और राज कपूर साहब का प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मेरा नाम जोकर, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज तो इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, मेनली इसकी लेंथ की वजह से। 4 घंटे से ऊपर की थी ये फिल्म। एक बार एक कॉमेडी टीवी शो में सुनिए राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म के बारे में क्या शेयर किया था।
1: बहुत प्यार से, लगन से बनाई थी फिल्म, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। जब पिक्चर नहीं चली, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हर पिक्चर की भी अपनी अपनी, जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट। मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी, जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको।
0: उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि बहुत बोर्ड थी उस टाइम के हिसाब से, मे बी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। वेल, ये जो कॉमेडी को ट्रेजेडी के साथ मिला के जो सोशल मैसेजेस देते थे, यही शायद अमेजिंग क्राफ्ट था इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन का, राज कपूर का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों। ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा जिंदगी।

0: सोने का रिश्मा कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भाई अगर 2 जून की रोटी वाले जोक्स खत्म हो गए हों तो आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जो मर्द हैं ना उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: नीचे पे ट्यून्ड इन हुआ, पर इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली यार हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ही तो हमने देखा है कि जो मर्द गण हैं वो भले ही 40-50-60 साल के हो जाएं लेकिन वो हीरो के तमगे के साथ ही ऑन स्क्रीन नजर आते हैं और उनके साथ एक 20-22 साल की हीरोइन दे दी जाती है एज अ को-स्टार। सो दैट्स व्हाई आई सेड हमारी सोसाइटी में भाई मर्दगण भले ही एज में बड़े हो रहे हों लेकिन ना तो उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, ना ही उनके बाल सफेद होते हैं और ना ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो सिर्फ महिलाओं के साथ होती है ना। तभी तो कैन फिल्म फेस्टिवल में जब ऐश्वर्या राय इस बार आई तो भाई उनको ट्रोल कर दिया गया। टू विच नाउ माधुरी दीक्षित हैज स्लैम्ड सच पीपल कि भाई आप एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग रिमार्क्स जो हैं वो देना बंद कीजिए बिकॉज शी इज अ ग्लोबल स्टार। बट क्या करें माधुरी मैम, हमें ही मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के मर्दगण उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, वो तो और जवान होते जाते हैं यार, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

पाता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।